दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसमदी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहद शाह जिस पास बैठियां सोहिया सबना दावेसा सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहद शाह जिस पास बैठियां सोहिया

बहु बहु वाणी निरंकार है, बहु बहु वाणी निरंकार है। तिस जेवड अवर न कोए, तिस

गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी ना जिनी नाम ते आया। गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

धम्मा शरण परि की राखहु शर्मा। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमारे दुष्ट सब तुम कावह, आप हाथ दै मोह बचावह। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन को आज संघरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चौने चौने सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुज जू करी अहो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद्ध कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तो हिब खाने ओ। दोहरा

0: की फतेह।
1: बल जी वाहे गुरु, एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं प्रथम भगवती समर कै गुर नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरे है घर नौ निदया वै ताय। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय दसम पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा त्याग।

जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तनासरी

रहाओ आदि अंत दयाल पूरन तिस बिना नहीं कोई जन्म मरण निवार हर जप सिमर सो आमी सोए वेद सिमृत कथै शास्त भगत करह विचार मुक्त पाइय साध संगत

तषाड बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यो प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सोने ओ गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखहु शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखहु शरणाई सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय हो सिफत खसमदी नूर अर सहु कुरसों चटिया तुद डिठे सच पातशाह

बिरले काहू जाना, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्तकाया रखिया परमेश्वरै, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, धन चरण रखिया जगदीश्वरै, सर्व रखिया गुरदयाल है, पै दुख विनाश नै, भगत वशल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरखे चित्त है, बिलावल महला पंजवा, ताती वाओ न लगई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिरद हमारे राम कार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा भेटिया जन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया ए काले बलाई, रहाओ राख लिए तन रखन हार, सब व्याध मिटाई, कहो नानक कृपा भई प्रभ भये सहाय, सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एको अंकार सतगुर प्रसाद, जय कर कीरत आखिय करते कहे विचारो, तित घर गावो सोहिला सिवरे हो सृजन हारो, तुम गावो मेरे निरभाओ का सोहिला, हो वारी जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ, नित नित जी अड़े संभालियन देख गा देवनहार, तेरे दन कीमत ना पवै ते सदा ते कवन सुमार, संबत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल, देहो सज्जन असीसड़िया ज्यों होवै साहिब स्यों मेल, कर कर एहो पहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरी, नानक से देह आवन रागासा महला पहला, शै कर शै गुर शै उपदेस, गुर गुर एको वेस अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर, राख बड़ाई तोए रहाओ, विसोए चस्या घड़िया पहरा थित्ती वारी, माह होआ सूरज एको रोते अनेक, नानक करते के वेस, राग तनासरी महला पहला, गगन मैथाल राव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मल्या नलो पवन चवरो करे, सगल बानराए फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए भाव खंडना, तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत फेरी रहाओ, सह स्तव नैन नन नैन है तोहे काओ, सहस मूरत नन एक तोही, सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस्तव गंध इव जलत मोही, सब मह जोत जोत है सोए ते सदै चानण, सब मह चानण होए, गौर साखी जोत प्रगट होए, जोत इस भावै सो आरती होए, हर चरण कबल मकरंद लोभित मनो अनदनो मोहे आही प्यासा, कृपा जल दे नानक सारिंग कौ होए जाते तेरे नाए वासा, राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, कामे क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे, पूर
पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर दंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साधन जानिया तन यंत्र होमें कंडा हे ज्यों ज्यों चल है चुप है दुख पाव है जमकाल सह है सिर डंडा हे हार जान हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण भव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेसर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करों बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहा खाट चलो हर लाहा अगे बसन सुहेला औद घट दिन सरै नारे मन गुरमिल काज सवारे रहाओ एहो संसार विकार संसे मह तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए पियावै एहो रस अकथ कथा तन जानी जा कौ आए सोई बिहज हो हर गुरते मनह बसेरा निज घर महल पावह सुख सहजे बहोर ना होए गो फेरा अंतर जामी पुरख बेदाते

0: जाको आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना वै धर्म बहाले उथे सच्चे ही सच निबड़े चुण वख कटै जमालिया थौन पन कूड़ियार मोह काले दो दुख चालिया त्रिनार ते सिजण गए हार गए से ठगण वालिया लिखना वै धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहालिया
1: थोड़ी नानक जी उपाय का लिखना वे धर्म बहालिया उथे सच्चे ही सच ने बड़ा चुनो वखण जमालिया ਹਾਵਨ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੁੱਧ ਕਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇਰ ਤੇ ਸੇ ਜਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ

तीर्थ नावह अर्चा पूजा अगरवास बहकार जोगी सुन त्यावण जेते अलख नाम करतार सुखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मानस तोख उप

पल्ले होए पौड़ी दान महंड कलिखा जी मिले तमस्तक लाइए कूड़ा लालच छड़ी है होए एक मन अलग आई है पलते।

पत पवे चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिनक तुद पाया तातनी हसन ते आया न जनता के वस के छनारी तुद वे की जगत उपाया इकना नू तू मेल लह।

हाथ कहाँ लो गारो, शतर न पतर न चौर न चावर, बहती जात रह ना बिचारो, रथ नासव न गास सिंघासन, शिन में त्यागत नांग सिधारो, सूर न वीर न मीर न खानम, संग न को दिष्ट निहारो, कोट न ओस न कोट न छोटा, करत बिका दहु कर चारो, मित्र न पुत्र करतर साजन साख, उल्टत जात बिरह की शारो, दीन दयाल पुरख प्रपूरण, छिन छिन सिमरो अगम अपारो, श्रीपत नाथ शरण नानक जन।

सब आकाश ना मावत बिस्टा अस्त क्रिम उदर भरियो है दह दिस ताए महाबिख्या को पर तन छीन अज्ञान हरियो है जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो जम दूत।

काम क्रोध मद मत सर तृष्णा, बिन सजाहे हर नाम उच्चारी। इशनान दान तापन सच किरया, चरण कमल हृदय प्रबतारी। साजन मीत सखा हर बंदप, जीतान प्रभ।

आवद कट्यो ना जात, प्रेम रस चरण कमल संग, दामन बंध्यो ना जात, विदे मन

सहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसया गुरु का, जन्म मरण दुख जाय। हुवे सिफत खसामदी नूर अरसह कुरसह चटिया, तुद डिठे सच्चे पाते सा, माल जानम जानम दी। सजन सच्चा पाते साहु सिर साहद, जिस पास बैठिया सोहिया, सब ना दावे सा। सजन सच्चा पाते साहु सिर साहद, जिस पास बैठिया सोहिया, सब ना दा वेसा हो। सत नाम

ज्यों छुट्टड़ घर घर फेरै दोह चारण बदनाव नानक गुरमुख बख्शिया है।

मैं हर दर्शन सुख होई। राम कली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पयावे।

0: गौ ब्राह्मण को कर लाव हो गोबर तरन ना जाई तोते टिका तै जप माली धाल मिशा खाई अंतर पूजा पढ़े कतेबा संजम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाहे तरन दा महला पहला
1: मानस खाने करे निवाज छुरी वगायन तिन गलताग तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ओना पियावे ओही साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर मत्थे टिक्का तीड़ धोती कखाई हाथ छूरी जगत का साई नील वस्त्र पैर होवे प्रवान मलेच तान लै पूजे पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एह अन्न साडा पिटे तन पिटे पीड़ करीन मन जुठे चुली भरीन कहो नानक सच त्याई है सुच होवे ता सच पाई है पौड़ी चिते अंदर सब को देख नदरी हेठ चलांदा आपे दे वड्याईया आपे ही कर्म कराएंदा वड़ो वड़ा वड़ मेदनी सिरे से तंदे लाएंदा नदर उपठी जे करे सुलताना कहो कराएंदा दर मंगन पिख ना पाएंदा
0: पौड़ी चिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वड़ियाईया आपे ही कर्म कराएंदा वडो वडा वड मेज ने सिरे सिर तंदे लाएंदा नदर उपठी जे करे सुल्ताना काओ कराएंदा दर मंगन पिखना पाएंदा।